0: अपने समाजी अब क्या
1: मां
0: समझे तो
1: परमाता
0: को सतु जम को नीन दुनिया को